आकाशवाणी सुनने वालों भाइयों और बहनों और प्यारी दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आई एम योर फ्रेंड जाइडियो, वेलकमिंग यू टू दिस वीक्स एडिशन ऑफ जेम्स ऑफ इंडिया, विच कम्स टू विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड बेस्ट विशेस ऑफ एनसीएन रेडियो। इट हैज ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू ब्रिंग यू सम ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स ऑफ यस्टरडे, एंड सो वी इनवाइट यू एंड योर फैमिली टू स्टे ट्यून्ड टू द वॉइस ऑफ गायना एज वी बिगिन दिस मेलोडियस जॉयराइड, one in which we shall recapture the nostalgic memories of yesteryear. On today's program, we are featuring songs by Manhar Udas. Karvin Christian is on the console, so let's put the show on the road.